0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो। अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज। अभी डाउनलोड दी ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: अभी बैंक बनाता है आपका आज। अभी डाउनलोड दी ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
5: सिटी FM 89, we're playing your song.
6: You're listening to The Breakfast Show with Charmaine.
7: Welcome back, everyone. All right, so it's Friday. It's time for Front Page Interesting News, where we discuss all the cool, fun things that are happening across the globe. And I have two stories for you. First one up, archaeologists uncover an ancient fast food shop in Pompeii. Yep, you heard that right. Excavators in the ancient Roman city of Pompeii uncovered a fully preserved thermopolium, the ancient Roman equivalent of a street food counter or fast food drive-through. And the wild details are that the shop features bright, colorful frescoes painted right onto the stone counters, showing images of actual food that they served, including roosters and ducks. Archaeologists even found traces of 2,000-year-old pork, fish, snails, and beef hidden inside deep terracotta jars embedded into the counter. And it's really cool because it completely changes how we picture ancient daily life. Just like us grabbing a quick lunch on a busy workday, ordinary Romans almost 2,000 years ago were running up to a counter to grab a quick hot meal on the go. Crazy, isn't it? All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है IELTSON कंप्यूटर, जहाँ टेस्टिंग का हर पल होता है। कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री। Daily availability, nationwide centers, और results भी मिले within just 3 days. आज ही बुक करें अपना IELTSON computer, AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। No Frost, No Worries.
3: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
4: अभी बैंक बनाता है आपका आज, अभी डाउनलोड द ऐप, अभी अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
5: होल्ड ऑन, स्पेशल डिलीवरी कमिंग थ्रू।
6: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
7: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
7: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
11: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go.

0: 89.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: You're listening to City FM 89.
3: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
4: वी आर सिटी एफएम 89.
5: यू आर लिसनिंग टू
6: नॉन स्टॉप हिट्स.

0: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड दी ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
1: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
2: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में, बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
4: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो,
5: पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो। अभी
6: पैसे भिजवाओ मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी,
7: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी।
8: फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी।
0: कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड दी ऐप अभी, अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
9: You're listening to The

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
0: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89. We're playing the song.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
6: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं. इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
7: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
10: IELTS seems difficult. 4 sections. Limited time, high pressure.
11: Listening, reading, writing, speaking.
10: Not with AEO Pakistan.
11: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
10: Learn strategies that actually work.
11: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
10: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
12: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ. अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
0: City FM 89.
13: Hold on, special delivery coming through.

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से complete control. No Frost, no worries.
2: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी Jazz Cash ऐप से Jazz V5 Fantastic Bundle लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. Jazz Cash है ना.
3: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर.
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इनवर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
6: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
7: यू आर लिसनिंग टू
8: द रश आवर विद ABD.
9: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD. And guys, I'm going to be dampening the mood a little bit because I want to talk to you guys about something serious. It's a really pressing issue that, I don't know, I feel very strongly about. So it is something I want to talk about to you guys. So essentially, the first 1,000 days of a child's life set the tone for all the years yet to come. So essentially, the first 1,000 days since they are born are the most critical and the most important. And if a child does not acquire the proper nutrition in this window, it will impact them for all the years ahead. So essentially, for the first 1,000 days, if you are not able to provide them with exactly what they need, the rest of their lives are compromised. And this is why the conversation around nutrition and children is so important. We cannot let something like poverty and the lack of health services continue to stop our children and people with not as many benefits have a disadvantage just because they are not having access to, you know, the exact nutrition they need. And that is why exactly Dawn Media has started this campaign called ACT. ACT stands for Advocating Change Together. It's a nationwide initiative that's currently leading a campaign on nutrition to raise awareness about the challenges so many children in Pakistan face, and also why investing in better nutrition today means investing in a stronger, better, more secure Pakistan tomorrow. So if this is something that you feel like, you know, you resonate with, you want to learn more about, you just want to, like, you know, follow it and see what is happening in this space, make sure you follow ACT Pakistan Official on Instagram. I know I do this very often, guys, but this is something very important to me and I really feel for this cause. So I do like to share it on the show. On that note, I'm going to cut to break, play some music for you guys, bring the vibes back a bit. And then we will be doing our last segment, which is ABD's POV.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 8 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
3: This show was brought to you by Jazz.
1: City
5: FM 89.
6: This show was brought to you by AEO Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
7: Coming up next.
1: Future Sounds.
5: City
6: FM
1: 89.
8: Trending today.
9: Rapper Future's The Real Me debuts on the number one spot on the Billboard 200 charts. The achievement gives him 12 number one albums, surpassing Eminem and trailing only Drake, Taylor Swift, Jay-Z, and The Beatles overall. The project is also Future's first solo release since his pair of collaborative chart toppers with Metro Boomin in 2024.
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश
11: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
4: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी Abhi Bank, financial freedom for all.
1: We are
6: City FM 89.
1: Future sounds.
12: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: सिटी एफएम 89.
4: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
5: सिटी एफएम 89.
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
3: यू लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
7: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ. अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
1: City FM 89,
8: your drive along companion.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
8: Future Songs.
10: Vibe with us, your music.
11: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
1: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड दी ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
2: सिटी FM 89।
3: When I grow up, I want to be strong.
4: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
3: I want to learn big things.
4: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
3: I want to be the fastest.
4: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
3: I want to grow up like everyone else.
4: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
5: Nurture today, strengthen tomorrow.
4: Act, a Dawn Media initiative.
6: City FM 89.
4: You're listening to
7: Future Sounds.
8: Future Sounds.
9: Stay fresh, stay lit.
10: New music drops right here.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
1: सिटी एफएम 89.
3: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
4: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
5: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
6: City FM 89.
7: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ. अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
8: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
9: Introducing a system override for your ears.
10: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
11: Join ABD as he takes over the streets.
10: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
11: The rush hour with ABD.
10: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
12: Dial.
13: This is
14: City FM 89.
15: Hold on! Special delivery coming through!
16: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
17: We're now live on WhatsApp.
18: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
17: It's as easy as 03142-898989.
16: Save our number now and WhatsApp us.
19: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
20: Future Sounds.
21: Future Sounds.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Trending today.
5: Rapper Future's The Real Me debuts on the number one spot on the Billboard 200 charts. The achievement gives him 12 number one albums, surpassing Eminem and trailing only Drake, Taylor Swift, Jay-Z, and The Beatles overall. The project is also Future's first solo release since his pair of collaborative chart toppers with Metro Boomin in 2024.
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
7: City FM 89.
8: You got me going crazy.
9: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
4: सिटी FM 89.
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
4: 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
11: Future Sounds.
2: Future Songs.
12: Vibe with us, your music.
13: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM
1: 89.
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
5: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
6: फॉलो अस एट सिटी एफएम 89 ऑन टिकटॉक.
7: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to
10: Future Sounds.
11: Future Sounds.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
3: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
4: Have you saved our WhatsApp number yet?
5: 03142-898989.
4: Get in touch over WhatsApp.
6: City of M89. We're playing your song.
1: You're listening to
7: Future Sounds.
8: Future Sounds.
9: Stay fresh, stay lit.
10: New music drops right here.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: You're listening to City FM 89.
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
5: Our TikTok will have you scrolling for days.
6: Follow us at CityFM89 on TikTok.
7: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: City FM 89.
1: You're listening to
8: Beat Camp.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एट cityfm89
3: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग रील फिक्स.
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
0: यू आर लिसनिंग टू
2: बीट कैंप.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
4: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
7: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
8: your evenings just got an upgrade.
6: The Rush Hour with ABD.
9: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
10: Tune in or get left behind.
11: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
1: यू आर लिसनिंग टू
12: बीट कैंप.